आवे तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। जिन नर पाओ जिन नर पाओ जिन हर नर पाओ त्या

तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरे अनेक पढ़े बहु समृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता। तू आद पुरख अपरम्पर करता जी।

जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़या संजोगी मेल। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहज ही हर नाम समाया। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। तित सरवड़े पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुन गलिया रहा।

चौपाई कब्या बाज बिनती चौपाई हमरे करो हाथ देर अच्छा तब चा नन मन रहे हमारा हमरे दुख सबे तुम का वो सुखी बसे मोरो परवारा मोर अच्छा निज कर दे करिए पूरन होए हमारी आसा तुम्हें छाट कोई अवर न त्यावो सेवक सिख हमारे तारिये आप हाथ दे मुझे उबरिए पूजो सदा हमारे पच्छा राख लियो मैं।

आप अपनी बुद्ध है जेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, एके रूप अनूप स्वरूपा, अंड जेरत से तजकीनी, कहूँ फूल राजा होए बैठा, सगरे सृष दिखाए अचंब, अब रक्षा मेरी तुम करो, जो

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना सब ना गला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे।

कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साच नाम कर सान सुख मन आए बसे जिन इच्छा सब पुजाया। कहे नानक सुनो संतो सबत रो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। पंच दूत द्वास कीते काल कंटक मारिया।

जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निगी मिठी गोदा आनंद माणदी होई गुरु रूप प्यारी ते सवारी साथ संगत जियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, अज असी गुरमुख प्यारे बाऊ जी दियां अनमोल आत्मक लिखतां विच्चों एक लिखत करो जतन जे होए मेहरवाना आप जी नाल सांझे करन जा रहे हैं जी। लेख नंबर 7। आओ अपनी अपनी बिरतियां एकागर करिए ते लाहा लईए। करो जतन जे होए मेहरवाना। गुरबाणी दी इस पंक्ति दे दो पक्ष हैं। पहला करो जतन अते दूसरा होए मेहरवाना। करो जतन दे अंतरी भाव नु स्पष्ट करन लई कुछ विचारां पेश कीतियां जांदियां हन। सूरज हमेशा प्रकाशवान है ते इस दी धुप दा प्रकाश आ तो ही सहज सुभाए हो रहा है। इस तरह ए प्रकाश इलाही दात है, अमित है, अथाह है, इकसार है, सदीवी है, सहज सुभाए है, निग स्वरूप है, सुखदाई है, जीवन दाता है, शक्ति दाता है। हाँ जी, प्रकाश रूप है, अनेर खंडन है, वितकरा रहत है, निर्मल है, सर्वव्यापी है। इस धुप ते प्रकाश लई असी कोई सोच नहीं कीती, व्योंत नहीं कीती, मंग नहीं कीती, कालना नहीं काली, कीमत नहीं दिती। जद कदी असी इस धुप दी इलाही दात तो वांझे हुंदे हां

मत हुआ, हर का नाम कूट पाप हुआ। ऐसा नाम जप हमर रंग, नानक पाइया साध कै संग, जिह मार्ग की गण जहन कोसा। हर का नाम वह संग तोसा, जिह पैड़ महंद गुबैरा, हर का नाम संग उजियारा। जह पंथ तेरा को न संज्ञानु, हर का नाम धन अर पचानु, जह महा पाया तब तो वह काम।

उपकार। रतन त्याग गौड़ी संग्रह चैसा छोड़ चूड़ संग वाचा जो षड न स्वस्थिर कर्म जो होवन सो दूर परा नय छोड़ जय तुह कर सराम कर संग सहाय दह पर हर। चंदन दीप उतार तू करत प्रीत पसम संग हो तू मह पतत बिकरा नानकाली हो प्रभ दयाल करतूत पशु मानस जात लूप चार करा दिन रात बहर पी कंत्र मरवाया शुभ सनाह काश करा छुपाया। बाहर ज्ञान ध्यान सनार अंतर व्याप लूप समान अंतर गण बाहर तं स्व गर पाथर कैसे तरा था जाके अंतर बस प्रभाव नानक जान सहज समाय तो सोन अंध के समार पाव कर कह लेह गुण निभावे। कह बुझा तू बुझा डोरा न कही है ताओ समझा पूरा कह विष्णु पाद गावे गुम जतन कर ताओ पी सुर भांग कह पिंगल पर्वत पार पवन नहीं हो तो उस गवन। करतार करुणा मैं दीन बेनती कर नानक तुम्हारी कृपा तारा संग सहाय सुवावन चीत जो वैरायु तास प्रीत बलुआ के गृह पीतर बस आनंद गिर माया रंग रस। दृढ़ कर मान मन प्रतीत कारण मुड़ी चीत बैर क्रोध काम क्रोध मोह चूढ़ विकार महालोक द्रोह। याहु जुगत बिहाने के जन्म नानक राख देहु आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम बहर दास जीव पिंड सब तेरी रास तुम बात पिता हम बरक तेरे तुमरी कृपा महसूस कनेरे। कोई ना जान है तुमरा तू चे तू चा भगवंत सकल समाग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते स्वाग्याकारी तुमरी गात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक। दिन हर प्रशूट के लागे हन सोए नानक कहु न सी जय बिन नावे पत जय अष्टपति दस बस तुले पाछा उपावे एक बस कर्ण विकुट गुआवे एक पीना दिए दस पी हिर लिए तब मुड़ा कहु कह करिए। ज्येष्ठ

मान कह बहुर सा होली अज्ञानी मन रू सा करिया। अपनी प्रतीता अभी खोए बहुर उसका विश्वास न होए जिसकी बस तहागा राख है प्रभु आगा माना मात है उसे चौगन करें हार नानक साहिब सदा दयाल। मन को पाय तुम माया की हित सर पर्वत जान नियत वृक्ष सिंह रंग लावे ऊह बिन सह मन पछतावे ज्योति सह सोचाल नार लपट रही तहां अंधार। बटाऊ सिंह जलावे नीह ताक हाथ न की मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक पाप लाई। मिथ्या तन तन

उसका मिथ्या द्रोह मोह अभिमान मिथ्या सुप्रकृत कुमार स्थिर भगत साधु शरण नानक जाप जाओ जीव हर के चरण।

मिथ्या तान नह पर पुकार मिथ्या बासरित पुकार बिन बुझे मिथ्या सा पै सफल देह नानक हर नाम राय व्यर्थ सागत की अर्जा साज बिना कह उत सूचा व्यर्थ ना बिना तनांद मुखावत ताक दुर्गंध बिन सिमरन दिन रायन व्रथ बिहाय बिना जंके।

प्रभु कृपा तुम प्रगा सु प्रभु दया तुम प्रगा प्रभु सु प्रसन्न वासा मन सु प्रभु दया तुम तू तुम सर्वन धान प्रभु तेरी

साधु स्वभाव ब्रह्मासु समानी साधु के संग गोचर मरे साधु संग सदा पुरु पुल साधु संग बस पंच साधु संग मृत पंच साधु संग सब गिरी साधु के संग मनोहर बैन

ब्रह्म ज्ञान का तरह बट पाई पाई जाए ब्रह्म ज्ञान को बैल बैल जाइए ब्रह्म ज्ञान का खोज हम ईश्वर नैन ब्रह्म ज्ञान का परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत नाह ब्रह्म ज्ञान का सकल मन वाह ब्रह्म ज्ञान का कौन जान भेद ब्रह्म ज्ञान को सदा दियस ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जय अदा ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मृत

कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी सर व्यापाय कई कोट पाथर बिरख न बजाय कई कोट पावन पाणि बै संत कई कोट दीस भूमंडल कई कोट ससगर सूर नख्यातर कई कोट देव दानवेंद्र सर शतर सक

कूट पातात विवास विकूट नर्क सर्गन वास विकूट जन्म है जीव है मर है विकूट भजो

बछड़ी तड़फड़ाई संख दुख भूखा नह राजा ज्यो पावक ई धन नह त्राप संख दुखी छुटया केला ज्यो बुआड़ तेल की तमाह दुहला संत का दुखी धर्म ती रहत संत का दुखी सतमिथिया कहत करत नंद का दुखी पया नानक जो देह पावे सुई थे संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत का दुख का दरगह हमला सजाए संत का दुखी सदा

सुखी। एको एक एक पुछा नाय तोत की ओह सोजी जान नाम संग जख मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया। गुरु प्रसाद अपना सो जाय तिसकी जान हूँ तृष्णा बुझै सा संग हर हर जह कहत सर्व रोग त्यो हर जन रहत अन दिन कीर्तन क्यूल बकिया ग्रस्त मैं सोई निर्वाण। एक ऊपर जह जन की आशा तिसकी कट गया जंग फासा पार ब्रह्म की जह मन भूख नानक तिसह न लागह दुख जह को हर ब्रह्मन चित आवै सो संत सो हेला नहीं डुलावै।

ज्यों मंत्र का थम थमन त्यों गुरु का शब्द मन हमन ज्यों पाखाण नाव चढ़ तर प्राणी गुरु चरण लगत निहतर ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दसों दीप मन हो विकास ज्यों महाउद्यान महामार्ग पावे त्यों साधु संग में ज्योत प्रगटावे त्यों संतन की बांछा तूर नानक की हर रोचा पूर मन मूर्ख काहि बिल लाइया पूर्व लिख कर क्या पाइया दुख सुख प्राप्ति बनहार वरत्याग मुक्त सहजता दुख जो काश कर सुई सुखमान पूरा काहि फिर अजान कान बस आई तेरा संग लौट रहे रास लोग भी बतांग राम नाम जाप हृदय माह नानक पात सिद्ध कर जाहि जय वाखर कौल दुआ राम नाम संतन कर पाया ताजा बमान लिहु मन बोल राम नाम हृदय मह तोल लाद की संत है संचार और त्याग भी किया जंजाल तन तन कह सकुए मुख उजल हर दर कह सुए हो वा पार बिरला वा पार नानक ताक सत बरहार चरण साध की तुए तुए पी वर साध को अपना जियो साधु की दूर कर स्नान साधु पर जाइय कुरबान सा सेवा बट भागी पाइय सा संग हर कीर्तन गाइय अनक विघंत साधु राख हर गुण गाय अमृत राह चाख उठ गही संत है तराय सर सुहनान दिह पाया मृतक का जीवन हर पुख का देवता।

सदा दिन रहणी। सबति ऊच निर्मल इह करणी कर कृपा जिसको नाम दिया। नानक पूजा निर्मल थी जा का मान गुर की प्रतीत।

पवन नाम कृष्ण गुदरे संसरावन कर कृपा जहापन नाम लाय नन चौथे पाद मह सोजन गत पाय रूप सात जाक सत स्थान पुरुष सात पुर प्रदान कर दु सात सत जाक बाण सात पुरुष मह सुमारण सात कर्म जाक रचना सात मूल सात सात उत्पात सात करण निर्मल निर्मली जिस हिव जाय सह सब पलि सात नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सात नानक गुरु दिपाई

सो करण हार। अवर न बूझ करत विचार, करति किमित न जान किया। नानक ज्योतिष पावा सो करतिया, बिस्मन बिस्म पै बिस्मा। जन बूझिया तहाया स्वादु, प्राव करम कराज। जन रहे गुर का वचन पदार्थ, रहे उज दाति युत काटनार। जा कर संग तरा संसार, जन का सेव सोवड़ पागी।

करता ठाकुर के सेवक निर्मल दीत। ठाकुर का शिव के जाना संग प्रभु का शिव नाम का रंग शिव का उपरा पालन आरा शिव राखन रंग का सुशिव कर दया प्रभु तारण सुशिव सा समार।

मंत्रं प्रपय नाम रतंजन कर्म कपाया तुष कीश अवर्णा दृष्टाय नाम दान नाम रूप रांग नाम सुख नाम कसंग नाम रास ध्वजान त्रिपतन मंत्र नाम नाम समानी

जिन जन अपना प्रभु सत सूजन सरथ हो कर दत तस्वी शरण सरस को पाव दसरा तरस सप मिटाव और स्वयं सगरी शरण तस जन की दूसरी वाला गावन जान हुई तेरा नन तस जन की पूजा हो सात प्यारा स्वरूप सात पुरख जन जानिया सात गुरु तस का नाम तस का संग से पोत्र नन हर गुण गाय वस्पति सात गुर से की कर प्रत पार शिव को गुरु सदा दयाल से की गोर दुर्मात्मा हेरा गुरु वचनी हर नाम उतरा सतगुरु सिख के बंधन काट गुर का सिख उपकार दियाट सतगुरु सिख नाम दान दी गुर का सिख बड़ पागी ही सतगुर सिख हरत पद सवार नानक सतगुरु सिख का जीव नार सुमार गुर कै गृह सिख जो रह गुर की आज्ञा मन महंसा है आवस गाओ कार काश न जन हर हन व्रत सत आवे मन बीच सतगुर का पैस ते सेवक की कार ग्रास सेवा कर तो निष्कामी दस बहुत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जसा करी अनानक सो सेवक गुरु की मात जी भी सब विश्व गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गात जान है।

रंग पै प्रकाश साधु के संग रच रचना अपनी कलता हरि अनक बै नानक बलहारी श्लोक साधना चाले बिन भजन बिखिया सगरी सार हर हर नाम कमाय मना नानक हो धन सार अष्टपद संत जना मेल करहु विचारी सिम नाम आधार अवर्य पाप संवित बेसार।

मन की भावना छूटन हारी सिमरत सा सत वीर बिचारी हर की भक्त कर मन लाय मन बंछत नन फल पाई संग न चार सती रतना तू क्या लुटा वह मूर्ख मन सतमीत कुटा पर बनता ते कहु तुम कम सनथ राज रंग मय विस्तार ते कहु कम छुटकार आस हस्ती रथ सवार झूठा टंफ झूठ पा सारी जिंदी यत बुझ न बिगाना ना विसा नान पुछता न गुरु की मत तुम लिह एन भगत बिना बह डूबे सियान हर की भगत कर मन मीत निर्मल तुम्हारू जीत चन कमल राख मन वाह जन्म जन्म के गिर बिख जाहि आप जप हवरा नाम जपाव सनत कहत रहत गात पाव सार भूत सत हर को नाह सहज सुभाय नान गुन गाय गुन गावत त्रियो त्रस मैल बिंस जाय होम बिख फैल चिंत बस सुखनाल सास ग्रह सनम समैल षड श्याम सगरी मन साध संग पाव सज तनहर पूंजी संच करह व्यवहारी हर सुख दर गह जयकार

जह स्वरूप केवल जगदीश है, तह चार क्षेत्र जगत कह कीस है, जह जो स्वरूपी जो संग समावे, तह किस भूख मंत्र बतावे, करन करावन करण हार, नान करति का नाह सुमैर, जब अपन सुबह अपन संग बनाई, तब कौन माय बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कराया पह प्रवीण, तह वेद कतीब कह कुचीन, जब अपन आप आवर तार, तव सगन अप सगन कह विचार,

अंतर्जामिना ही उपया पुप्रात पारे जीवन वह पाय तुझ जो जो रचियो सोत सहतिया तुझ जो पावत सराय मिलाय पर करि हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर्माने या करन हार नानक एक जाने आ जन लग हरि कै नाय तुस की आस न बिरती जाय सेवक सेवा बनाय हुकुम बूझ परम पद पाई।

व्यापह मेले साध संग मिल करहु आनंद गुण गावह प्र परमानंद राम नाम तत करहु विचार दुर्लभ देह का करहु उदार अमृत वचन हरि गुण गाओ।

सबसराम सोन संवाद अनहत दहना दू कहन जाय अचरज विस्माद दिन दिखे सब दिखाय नानक जन सो जी पाय सो अंतर सो बहर अनंत कट कट ब्या प्रह भगवंत तरण माहि आकाश उपायाल सर्व दुखुन प्रतपाल बान तेन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी अगत सक

पाई। तिसका किया सब प्रवैन गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जान तिस सदा सुख हुए आप मिलाई दे प्रभु सुख होता नवंत पुलवंत पातवंत जीवन मुक्त जिस रदा भगवान।

श्लोक पूरा प्रभा राधिया पूरा जगना उन्न पूरा पाया पूरे के गुण गाव अष्टपदी पूरे कृपासन उपदी स पार ब्रह्म निकट कर पीख स सिमरौ गोविंद।

संसरणी आय कर कृपा प्रभाय मिलाय मेड गए बैर भय सब रिंग अमृत नाम साधु संग्रहण सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेवक सेवा जंजाल विकार दे रह दे राम नाम सन रसना कह दे कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निवही के हमारी प्रभु की वस्ताद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखम सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसा सोत न धान सर्वेच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए

सिद्ध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या ताप जोग का ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध्य सकल दिवदा सुर सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दृष्टिता यह फाल तेह जन का मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने निधान।

न जावै एक बार। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलाम निरंकार। भरिए हाथ पैर तन देह, पाणी धोतै उतर सुखे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। भरिए मत पापा कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखर नाहे, कर कर करना लिख लै जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगा तीर्थ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन सिर उत्ती माओ, कवन जित हुआ आकार।

गोविंद आखे ईश्वरी आखे सिद्ध आखे कीते कीते बुद्ध आखे दानवे आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव कीते आखे आखण पाए कीते कह कह उठ उठ जाए किते किते होर करे दया आखन सकै के जेवड़ भावै देव डोए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विगारता लिखिए सिर गावा रागा वार सो दर केहा सो कर केहा जित वै सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावन हारे किते राग परी सिव कही अन किते गावन हारे गावै तुहनो पौन पाणी वै संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै इंदे दासन बैठे देवते अंदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पढ़न लिखी सर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनी आ मन मोहन सुरगमश पयाले।

बलसूरा गावे खानी चारे। गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे। सही तुदनो गावे जो तुद भाव रते तेरे भगत रसाले। और केते गावन से मैं जित नयावन नानक्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है पियो सी जाय न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस पावै सोई करसी हुकम न करना जाई। सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करै विभूत। खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाह जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजै नाद। आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद अवरा साध। संजोग विजोग द्विकार चलावै लिखे आवै भाग। आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाह जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत ब्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिप जिस भावै तिवै चला।

0: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास,
1: असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार,
0: असंख सूर मोह पखसार।

हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बिसारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो बिसारे साचे साहेबा क्या नहीं करते रै

राख सदा प्रभ अपने साथ। तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगल अकत। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास ते होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइय जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ ने दावे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ के वाली अमृत के दाते सर्वांश दानी दतार पिता जीओ। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहां दी परमात्मा जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर चबर ताकत छत्र दे मालिक। धन धन धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते अठियां जपियां तपियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी। वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसां सुआसां संग निभाया तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी। वाहिगुरु पंजां तख्तां सर्वत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा साहिब बोलो जी। वाहिगुरु पिरथ में सर्वत खालसा जी की अरदास है। ऐ जी सर्वत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाये खालसा जी के बोल वाले खालसा साहिब बोलो जी। वाह सिखा नू बख्शो

गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंडली विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न होए। सिद्धां ने बेनती कीती कि जिस परमात्मा दी कथा अकथ है अते जो परमेश्वर सारियां नूं रिजक दे रहा है, लैण वाले थक जांदे हन, देण वाला कदे नहीं थकदा। ओ परमेश्वर जो अनथक है, गरीब नवाज कृपा करो, सानू दसो ओ साहब कैसा है, उसकी साहबी कैसी है, उसका नाम कैसा है। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, साचा साहिब साच नाए, ओ सच्चा साहिब है, उदा नाम भी सच्चा है।

सोरठ महला पंजवा। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। संत हो सुख होआ सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर, रव रहया सबनी जाई रहाओ। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना।